0: necesito.
1: Le sé, quieran que niembe soñan chutongan a tu inele. Risa tawa, tirine, sumje ina, lenge zo, tamo chacha le chuyon be, mendu shunando.
0: Tote, que quiero la hora, ganto que niembe soñan lise de tona, eta lise tata, ne, ya goy. Da que pinzón toco yon mendu shuyen lo, lo,
1: tote. Nes, no, no, shuten cha con.
0: Sí, sí.
1: Lê, kamsa,
2: ऐसे के ला कांचों से के लुचे दे ना कौन शून्य के लुई वंग जिला दा ठोको जिले ला तो ना हुए था सिंचाई यंग को रंग ला बुझे इन ला लुई नम जे ही दा तो सिंचाई मलो ला बुझे कुंगन से दा चाव लम तो यंग जुदा
1: ना
2: सिक्की ढोमो चिर जों दा ला दा समचो ला दा भरी जंदु ला दा समा दाऊंग रुग ला दा पैना दाऊंग रुग ला दा शिजिंग रुग ला चाव मलो बुझे कुंगन से दा दा चाव लम तो यंग जु
1: Let's say,